वाह जी वाह, क्या बात है, बड़ा शानदार। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, बस एहो जी कृपा बनी रवे साडे सारयां दे उत्ते। प्रोग्राम सरब रेडियो तुसी सुन रहे हो, ते नाल दी नाल किसी नूं भी मॉर्गेज की भाल है, फस्ट या सैकेंड मॉर्गेज तुसी लब रहे हो या सिक्योर लाइन ऑफ क्रेडिट की लोड़ पै गई है, ते GNE मॉर्गेजिस दे मयंक पटनागर जी नाल तुसी जरूर गलबात कर सकते हो। बड़े लंबे समय का एक्सपीरियंस इन्हां दे कोल है, ते बहुत वधिया नॉलेज रखते हैं मॉर्गेज की इंडस्ट्री दे विच। ते संपर्क नंबर 647-702-2023 647-702-2023 647-702-2023 मयंक पटनागर जी।

गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे चाहिए। आपको चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905 4000।

अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क वे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5530 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

0: Last days of Ronan Duff's Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.
1: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चार इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आपने उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहाँ पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-9052 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

प्यारा साहब स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। तो अब आपके लिए जो हिंदू भाई बहन है उनके लिए अभी पितर पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं वो पितर पक्ष में को मनाते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो होता है पितृपक्ष, ये अभी अक्टूबर के कुछ दिनों तक, अक्टूबर 8 तक मेरे ख्याल चलेगा, और फिर इस हफ्ते आपके लिए पूर्णिमा, जो स्पेशल पूर्णिमा थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा थी और मैंने उसकी मून जो होता है उसकी काफी अच्छी अच्छी फोटो खींची। मतलब एक मैंने मून की फोटो खींची, उसमें एक नीले रंग का छोटा सा कोई चीज आया, और फिर जब मैंने दोबारा लिया उसका फोटो तो वो चीज नहीं आई, लेकिन उसमें वो नीला सा कुछ आया है। तो आइए अब प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपका सभी का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आपने प्लान किया होगा, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे आप, आपको शॉपिंग करनी है, घर के कितने सारे काम करने हैं, और फिर कल संडे का दिन तो फिर वापस काम पे जाने की तैयारी में लग ही जाता है, ऐसे ही है ना। तो अब आपके अगर अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। किचन की गैजेट चाहिए, नया टीवी चाहिए, दिवाली आने वाली है, आप किसी को गिफ्ट लेके देना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अगर आप सोच रहे हो मूव होने की तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एच के मोबाइल बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को ये सेवाएं देते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, बहुत सारी टीम्स हैं उनकी, आपका सामान को हिफाजत से पहुंचा देते हैं। तो एच के मोबाइल को आज ही कॉल कीजिए, 416-452-7704, 416-452-6704 एच के मोबाइल। और लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, आपके यहाँ अब मास्टर कोलिजन डिपो वाले खुल चुके हैं, और तो आपको बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं। और मास्टर कोलिजन डिपो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब इलेक्शन अक्टूबर 26 को है, तो आपको जहाँ न्यागरा निवासियों के लिए थॉरल में जो खास करके रहते हैं कि साध महमूद वहाँ पे काउंसलर की रेस में है, तो पहले बहुत सालों से वो अपनी कम्युनिटी को, बहुत हर कम्युनिटी को यहाँ इस इलाके में वो मदद करते आ रहे हैं। तो आपको देखना होता है ये जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं कि कौन अपनी आपकी कम्युनिटी को अच्छे से अपना टाइम दे पाते हैं, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप वोटिंग डालेंगे। वोटिंग आपका राइट है, आपको जरूर इसको करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मल्ली का गाय हुआ कोई गीत सुनाया जाए आपको, ठीक है ना। तो लेट्स देखते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स हैं, क्लासिकल हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं मन्ना डे जी के। तो मेरी लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कि जिंदगी को लेकर के जैसे भी हम दुनिया में आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। और जब भी ये बहुत सारी परेशानियां झेल लेती हैं, फिर आपको ये समझ में नहीं आता, आपका दिमाग बौखला जाता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, क्या करें, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जिसने आपको इसमें डाला है वो जरूर आपको निकाल लेगा भाई, सही है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं।
ये गाना भी नहीं सीखा है।

0: जीवन कहीं भी चहर का नहीं है, जीवन कहीं भी चहर का नहीं है, आधी से तू बातें का नहीं है, तू न चलेगा तो चलने भी रहा है। तू न चलेगा तो चलने भी रहा है, मंदिर को तेरे ही तेरी है, तुमको चलना होगा।
1: और देखकर नदी के बहते हुए पानी ये चौड़ा पहाड़ और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर मां जी कहते, और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत, मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ पांच पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना है, कहीं दूर जाना है, जैसे मुझे भी किसी नाम का इंतजार है, किसी बांझी की
0: जरूरत है। बह जाए किनारा, बड़ी ही नेक समय की है सारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चले चले रे सारा चंदा, चले चले रे सारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तू बाते चलता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है।
1: जी हाँ, तो ये राजेश खन्ना की आवाज थी, तो कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में। दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। और आपको टीवी लेना है या फिर आपने अभी दिवाली आने वाली है तो टीवी आपको किसी को अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को लेकर के देना होगा, तो आप टॉप चॉइस की जो स्पेशल्स का देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045। और अब अगर आप मूविंग होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फिक्र करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो आपके लिए टॉप चॉइस आपके लिए एचके मूवर्स करके देते हैं। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आज ही आप उनको कॉल कीजिए 416-452-4416-452-6704। हैमिल्टन वाले हो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1 लाख डालर तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਲ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਜੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840, ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਮੀਰਾ। ਜਿਨਕੋ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ कि आजकल पितर पक्ष चल रहा है, तो आइए चुनरी के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आइए आपको ये जो गाने हैं ये भी राजेश खन्ना के ऊपर ही फिल्म के ऊपर, उन दोनों जो स्क्रीन पे राज कर रहे थे लोग वो यही थे, आशा पारेख थी, धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी और फिर और ये

इनको नजर का जो भी इनका चल रहा है करने दो, आप घर संसार में वापस आ जाइएगा। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आगे बढ़ते हैं, आइए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे और साथ में आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो इसी से आपको हम आगे लेके बढ़ते हैं इसी तरह। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए, 905-799-0045। अगर आपने किसी तरह की भी पूजा का सामान चाहिए, अभी पितर पक्ष चल रहा है तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आपके लिए इंडिया सजावटन पूजा हट पे आपको सारा सामान मिलेगा। और फिर अगर आपने खाना ऑर्डर करना है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली की पार्टी के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया पे, न्यूली रेनोवेटेड। और जानकारी के लिए 905-814-1770 पर कॉल करो, 9058141730 पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है, तो इस बार जो स्पेशल जो फुल मून है बहुत बड़ा है और स्पेशल है, तो चाइनीज लोग इसमें बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, तो मून केक बनाते हैं और उसका आनंद समझते हैं, तो बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं इसको। तो आइए इसी के बारे में आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर का।

0: प्रोग्राम पसंद आ रहा प्लीज आप बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम आपकी की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो आपको जो मैं गाना सुनाना चाह रही हूँ मैं आपके लिए पेश कर रही हूँ, तो एंजॉय द सॉन्ग।
1: राजा माया।

सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आप हमको चेक करवाने के लिए 905-4000।

तो ऑब्जर्व कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिकोजी एंड विलियम्स पार्क वे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन चेयर, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808.

अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर आपने उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट, ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट

प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे, कहां पे, योगी ऑटो सेंटर। तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं, अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगी ऑटो सेंटर के हैरी को, हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-9052 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है, आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है। तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगी ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट।

जी प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। तो अब आपके लिए जो हिंदू भाई बहन है उनके लिए अभी पितर पक्ष चल रहा है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से हैं वो पितर पक्ष में को मनाते हैं, अपने जो पूर्वज होते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनका दिन मनाते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये जो होता है पितृपक्ष, ये अभी अक्टूबर के कुछ दिनों तक, अक्टूबर 8 तक मेरे ख्याल चलेगा, और फिर इस हफ्ते आपके लिए पूर्णिमा, जो स्पेशल पूर्णिमा थी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया। ये बहुत बड़ी पूर्णिमा थी और मैंने उसकी मून जो होता है उसकी काफी अच्छी अच्छी फोटो खींची। मतलब एक मैंने मून की फोटो खींची, उसमें एक नीले रंग का छोटा सा कोई चीज आया, और फिर जब मैंने दोबारा लिया उसका फोटो तो वो चीज नहीं आई, लेकिन उसमें वो नीला सा कुछ आया है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उम्मीद रखती हूँ कि आपका सभी का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा, आपने प्लान किया होगा, अच्छी अच्छी चीजें अच्छे एंजॉय कर रहे होंगे आप, आपको शॉपिंग करनी है, घर के कितने सारे काम करने हैं, और फिर कल संडे का दिन तो फिर वापस काम पे जाने की तैयारी में लग ही जाता है, ऐसे ही है ना। तो अब आपके अगर अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए, इंटर मॉडल एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। किचन की गैजेट्स चाहिए, नया टीवी चाहिए, दिवाली आने वाली है, आप किसी को गिफ्ट लेके देना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए ग्वाल्फ में है, और उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स.com पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। अगर आप सोच रहे हैं मूव होने की तो अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एचके मोबाइल बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को ये सेवाएं देते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, बहुत सारी टीम्स हैं उनकी, आपका सामान को बाजार से पहुंचा देते हैं। तो एचके मोबाइल को आज ही कॉल कीजिए 416-452-6704 एचके मोबाइल। और लंदन वालों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, आपके यहाँ अब मास्टर कोलिजन डिपो वाले खुल चुके हैं, तो आपको बहुत बढ़िया सेवाएं देते हैं। और मास्टर कोलिजन डिपो आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हो। तो अब इलेक्शन अक्टूबर 26 को है, तो आपको जहां न्यागरा निवासियों के लिए थॉरल में जो खास करके रहते हैं कि साद महमूद वहां पे काउंसलर की रेस में है, तो पहले बहुत सालों से वो अपनी कम्युनिटी को, बहुत हर कम्युनिटी को यहाँ इस इलाके में वो मदद करते आ रहे हैं। तो आपको देखना होता है ये जब आप इलेक्शन में वोट डालते हैं कि कौन अपनी आपकी कम्युनिटी को अच्छे से अपना टाइम दे पाते हैं, कुछ भी सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए जब आप वोटिंग डालेंगे। वोटिंग आपका राइट है, आपको जरूर इसको करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मल्ली का गाय हुआ कोई गीत सुनाया जाए आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं, उनके बहुत सारे नंबर्स हैं, क्लासिकल है, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने हैं मन्ना डे जी के। तो मेरी लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, कि जिंदगी को लेकर के जैसे भी हम दुनिया में आए हैं तो चलना ही पड़ेगा। और जब भी ये बहुत सारी परेशानियां घेर लेती हैं, फिर आपको ये समझ में नहीं आता, आपका दिमाग बौखला जाता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएं क्या करें, तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जिसने आपको इसमें डाला है वो जरूर आपको निकाल लेगा भाई, सही है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं।
ये गाना भी है इसी तरह का।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तू बात करता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने की राह है, तू न चलेगा तो चलने की राह है, मंजिल को तेरे से तेरी राह है, तुझको चलना होगा
1: जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर मान जी कहते, और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत, मैं जब भी इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा इनके साथ पांच पुराना मेल है, जैसे इस धारा के साथ मुझे भी कहीं और जाना, कहीं दूर जाना, जैसे मुझे भी किसी नाम का इंतजार है, किसी बाझी की
0: जरूरत।

0: जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आज से तू बातें करता नहीं है, तू न चलेगा तो चलने गिरा है। चलेगा तो चलने गिरा है, मंजिल को कर के तेरी निगाह तुझको चलना होगा,
1: तुझको
0: चलना
2: होगा। जी हाँ, तो ये राजेश खन्ना की आवाज थी, तो कितना अच्छा आपको लग रहा है। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। और आपको टीवी लेना है या फिर आपने अभी दिवाली आने वाली है तो टीवी आपको किसी को अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को लेकर के देना होगा, तो आप टॉप चॉइस की जो स्पेशल्स का देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम और फिर अपने ऑर्डर बुक करिएगा 905-799-0045 905-799-0045। और अब अगर आप मूविंग होने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको फिक्र करने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आपका जो सारा काम है वो आपके लिए टॉप चॉइस आपके लिए HK मूवर्स करके देते हैं। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आज ही आप उनको कॉल कीजिए 416-452-8004-1645-452-6704। हैमिल्टन वाले हो कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो ताजी पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1 लाख डालर तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3840 BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ। ਸੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਹੋਸਟ ਮੀਰਾ। जिनको लोगों को नहीं पता आपको बता दें कि आजकल पितर पक्ष चल रहा है, तो आइए चुनरी के बारे में बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, तो आइए आपको ये जो गाने हैं ये भी राजेश खन्ना के ऊपर ही फिल्म के ऊपर उन दिनों जो स्क्रीन पे राज कर रहे थे लोग वो यही थे, आशा पारेख थी, धर्मेंद्र थे, हेमा मालिनी थी और फिर और ये

इनको नजर का जो भी इनका चल रहा है करने दो, आप घर संसार में वापस आ जाइएगा। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आगे बढ़ते हैं, आइए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, और साथ में आपका मनोरंजन भी करते रहेंगे। तो इसी से आपको हम आगे लेके बढ़ते हैं। इसी तरह अब अगर आपने किसी किस्म के भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे चाहिए, 905-799-0045। अगर आपने किसी तरह की भी पूजा का सामान चाहिए, अभी पितर पक्ष चल रहा है तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो आपके लिए इंडिया सजावटन पूजा हट पे आपको सारा सामान मिलेगा। और फिर अगर आपने खाना ऑर्डर करना है या फिर लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली की पार्टी के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए मौजूद है न्यू एंड ब्रिटानिया पे, न्यूली रेनोवेटेड। और जानकारी के लिए 905-814-1770 पर कॉल करो, 9058141730 पे आप इनको कॉल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गाना है, तो इस बार जो स्पेशल जो फुल मून है बड़म है और स्पेशल है, तो चाइनीज लोग इसमें बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, तो मून केक बनाते हैं और उसका आनंद समझते हैं, तो बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं इसको। तो आइए इसी के बारे में आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कि तेरे जैसे बहुत देखे। तो आशा पारेख और सुजीत कुमार के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से सार। तो अब अगर आपने कार खरीदनी है तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हैमिल्टन वाले हो कि तुम अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक। ते फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीमां तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण दी पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवे टायर भी दी लोड़ है तां ओह भी मिलणगे। चार टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो, AM 530 लिसनर लई खास ऑफर। जदों तुसीं BBT रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ इह दस्सो, मैं AM 530 दे मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुणिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, $500 दी सिद्धी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बॉब BBT रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384-3840। BBT रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट लोकेशन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, BBT रॉकलिफ ऑटो। आइए अब आपको एक और बढ़िया सा प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। तो ये भी गाना आज हमने आशा पारेख जी के ही गाने सुनाए हैं आपको। तो उम्मीद रखती हूँ आपको भी पसंद आ रहे होंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि उस दौर में उनके ही मूवीज देखी हैं, गाने सुने हैं। तो हमारे जमाने के वो थे एक्ट्रेस, तो गाने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कि

से प्रोग्राम पसंद आ रहा। आप बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो आपको जो मैं गाना सुनाना चाह रही हूँ, मैं आपके लिए पेश

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

रहाउ मन निर्मल कर्म कर तारण तरण हर अवर जंजाल तिर काहू न काम जियो जीवन देव पार ब्रह्म सेव एहो उपदेश मोको गुर दीना जियो तेस स्यो ना लाय हीत जाको किश नाही बीत अंत की बार ओह संग ना चले मन तन तू आराध

गोहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण अवर आस काश पटल ना की जय सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection kalon to chutkara. Bina vyaj nikiyan nikiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100. कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
2: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
3: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 or visit teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
4: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 G Media Group।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: इश्तिहार है तब व्यापार है। अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। जिहड़े दोस्त साढ़े नाल हुणे जुड़े ने जी, उन्हां नूं निघी जी आया आखदे, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल हर एतवार वाले दिन बन जाता है। 12 to 1 रामस पंजाबी वीकेंड शो ते 1 to 2 सुनिया जाता प्रोग्राम आ नज़रिया। इन्हां प्रोग्राम्स दे दौरान साढ़े नाल स्टूडियो च गलबात करन वास्ते टैलीफोन नंबर हुंदे ने जी 416-233-7368 जां 8297 416-233-7368 जां फिर 8297 ते अपनी गलबात हो सकती हुंदी है। मैं तुहाडा होस्ट मनजीत सिंह गेल। प्रोग्राम तो बाद विच मेरे नाल कोई भी गलबात तुसी करनी है ते फिर 416-669-1379 ते कर सकदे हुंदे हो। 416-669-1379 मेरा परसनल नंबर है। इस नंबर ते प्रोग्राम दे संबंध विच जां रियल स्टेट संबंधी कोई भी जानकारी लैनी होवे ते लई जा सकदी हुंदी है। सानूं 1-2 bedroom दी जे कॉन्डोमीनियम अपार्टमेंट थोड़े पास वाटरलू यूनिवर्सिटी के आस पास अगर तुसी वेचना चाहते हो तो जरूर संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। और एक बड़ा शानदार ऑफिस स्पेस 2nd floor ते भी ट्रेनमेड ड्राइव पर ही है जी, जो मैं पहला एडवरटाइज़ करता रहा, वो साड़ी हुण ऑलरेडी रेंट पर चढ़ चुकी है। सो एक अनदर यूनिट, बड़ा शानदार यूनिट है भी। अगर तुसी अपना कोई भी प्रोफेशनल ऑफिस सैटअप करना हो, क्लोज टू ड्रू रोड एंड ट्रेनमेड ड्राइव वाली साइड में पैंदा। सो ब्रैम्बली एंड ड्रू रोड का इंटरसैक्शन नेड़े लगता है। सो अगर इस एरिए अपना कोई ऑफिस तुसी सैटअप करना, ये लिस्ट नहीं असी कीता, अगर तुसी देखना चाहते हो तो फिर मेरे नाल संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की जरूरत है, कोई 6,000+ square feet का एरिया हो, उसका प्लस नाल पार्किंग स्पेस जी तकरीबन 8 to 10 ट्रेलर पार्क होने की सुविधा होनी जरूरी है। वो कितने भी ब्रैम्पटन, मिसिसागा, बोल्टन, कैलडन के किसी भी हिस्से दे विच जां मिल्टन वाली साइड में भी अगर थोड़े पास है तो वो भी साढ़े नाल तुसी संपर्क कर लियो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। 1 4-bedroom 3 वॉशरूम का फ्री होल टाउन हाउस जो कि बोवे ड्राइव एंड हाईवे 410 के नेड़े रौना स्टोर के बिल्कुल नेड़े है जी। सो उसनों भी तुसी खरीदना होवे इन फ्यूचर तो वो दे ले भी सानू तुसी संपर्क कर सकते हो। 416-669-1379 टैलीफोन नंबर है। 416-669-1379 इस वेले जुड़ चुके हो प्रोग्राम नज़रिया दे नाल। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसी प्रोग्राम के दौरान स्टूडियो करनी हो 416-669-1379 ते माफ करना जी, ये मेरा परसनल सैल नंबर है। स्टूडियो कॉल करने वास्ते टैलीफोन नंबर होंगे ने 416-233-7368-8297। अज एक कैंपेन लॉन्च हो जा रही है जो कि हरसिमरन सिंह जो कि रीजनल एज ए रीजनल काउंसलर कैंडीडेट वार्ड 9 ते 10 तो, बलजिंदर निहाल सिंह जी जो कि सिटी काउंसलर कैंडीडेट के रूप के अपनी अज कैंपेन लॉन्च कर रहे ने। 3 बजे तो लैके 5 बजे तक के 2 घंटे का प्रोग्राम होना है। नंबर 2 ऑक्शन लेन ब्रैम्पटन जो कि क्वींस मैन्योर इवेंट सेंटर है उत्थे हो जा रहा है। गौरबे ड्राइव एंड क्वीन स्ट्रीट का मेजर इंटरसैक्शन

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.

0: Everyone knows you don't let a kid swim unsupervised. You don't touch a baking tray straight out of the oven.
1: Ouch!
0: You're careful when using a sharp knife.
1: Ah.
0: And you don't drive without a seatbelt.
2: Buckle up!
0: But not everyone knows that prescription meds left out in the open cause accidental overdoses in young people every year. Substance reminds you to store your medications safely or bring them back to the pharmacy if they're expired. A message from Substance. Learn about it. Talk about it.
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: Hello.
5: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
4: हाँ जी, कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
5: इंडिया दिया टिकटा चाहिदिया सी।
4: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दिया टिकटा ले लो। इंडिया कित्थे जाना?
5: चार टिकटा दिल्ली दिया ते दो अमृतसर दिया। मिल जानगियां?
4: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां। दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, एहो ता साडी स्पेशलिटी है। बस दसो की टिकटा कदों दिया चाहिदिया ने। ते हां, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
5: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
6: 32-55-80
5: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
6: काउंटिंग नहीं, ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
5: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 ओवे ड्राइव नियर चिंगोजी, कॉल 905-450-2828 905-450-2828।

0: News Desk. Locally covered. Nationally connected.
1: Afternoon, welcome to Dave Tarla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा अज्ज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे विच नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिये। हरप्रीत सैनी जी भी आ रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करावांगे। जस्ट स्टे ट्यून। अपने ने कोई भी गलबात करनी है, नंबर ने 416-677-0609, 677-0609। जिस तरह जानकारी दी थी पिछले दिन कि चार मुंडिया डिपोर्ट किया गया है इथों, जिहड़े कोई ना कोई क्राइम किया। टोटल 100 तो वध डिपोर्ट कर दिते ने। पिछली बार जिहड़े डिपोर्ट किए थे पलविंदर सिंह, जसमेर सिंह, साहबजोत ते अमित जो बाजवा, इन्हां नूं डिपोर्ट किया है। वैसे जे देखा जाए मई 9-2022 की गल है, बीसी दे विच कपल सी जिहड़ा घर दी सफाई करवाउंदे सी किसे तों, जिहड़े सफाई करन गए सी उन्होंने ही उन्होंने कुट कुट के मारता। थोड़े बहुत जिहड़े पैसे सी ओह लै के भज गए, बाद तां फड़े गए सी। और जदों भज्जे ने उन्हां विच गुरकरण सिंह ते खुशवीर तूर ते अभिजीत सिंह ने, ते इन्हां दे फर्स्ट डिग्री दे मर्डर लगे ने। ते उन्हां दा परिवार कह रहा है कि काश इन्हां नूं पहलां ही डिपोर्ट कर दिता गया।

0: मैडम जी बोलते नहीं जी
1: बोलती
0: गल नहीं सुना मैं गल सुनी जी सची है जी
1: केड़ी गल
0: कहती हरियाणे का जेड़ा मुंडा सी जी छोटी जी उम्र का जी
1: ओ कटन लिया
0: हां जी
1: गूगल बॉय
0: मतलब ओ नाम है समझ गया जी कि रखा होगा जी
1: कि रखा
0: पहला तो जी मतलब बेचारा खेडता रहा होगा जी मतलब पापा घर आया होगा उन्हें कहा होना भी किधर गया हो मां ने कहता होना भी हां मतलब बाहर खेडता पापे ने लिया के फिर अंदर रखता होना अंदरों फिर रोन की आवाज आई होनी फिर मां ने पूछा होना
1: की
0: कुट लिया
1: अच्छा ओ कुट लिया नहीं है ओ कुट लिया या
0: हां कुट लिया या
1: हां तेरे अपने लॉजिक हर थां ते अपनी
0: बोलना ही है जिवे मर्जी करो भी उन्हें तो पूछना है भी कुट लिया
1: काका तू ओ दे ना ना ते ना जा जिन्नी ओनु नॉलेज आ ना
0: ओ मैं ओही कहना भी ओनु नॉलेज ता फिर आपे ही आई नहीं सी जी
1: क्यों
0: कहदे हुंदे ने डंडा पीर है वेगड़ियां देगड़ियां दा
1: तेरे द्वारे भी मेनू घुमाउणा पैणा मेनू
0: नहीं ओदा ठीक आ पर कहदे भी ओनु हुण 10 लाख रुपया सरकार ने देता
1: हां देता
0: बई कमाल ही होगी हुण ता
1: मतलब इसलिए हुण जे तू 10 लाख लेना तेरे द्वारे भी डंडा घुमावा एक करी
0: फिर एदा मतलब हुण ओदा नाम बदल जी
1: की बदल जी
0: कोटिया सी कर देणगे हुण ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਆਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਬਾਪੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ ਕੁੱਚੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ

0: बाबा जी मेरा बिजनेस नहीं चलता, बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं पड़ती, बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, देवता अतले नु कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला, भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
2: होलदार गंडा सिंह रिपोर्टिंग सर।
3: मैं तो बंदा की गल की करता है, मैं बकवास ही करी जाता, मैं बाहर तुरंत मैं गड्डी सुन दिया, मैं क्या भी बंदा बोलन की डे कहने अंग्रेजी दी लत तोड़नी लाई, पता की मैं भी सच्ची बहुत दुखी आए थे तो बंदा पूछे भी तू शर्मा जे तेन नहीं आती, तू ना बोल, एग्जैक्टली, नाले कुत्ते नूं भौंकी जानी अंग्रेजी नाले आउंदी नहीं, पता की गंडा सिंह जी मेरे मुंह गाला निकल गया बिना गड्डी, फिर मैं कहा नाल आवाज चले जांदी अगे।
2: मैं कहा हां जी, पता की गंडा सिंह जी तुसी ही तां ओ जिहड़े अकलमंद हो, मतलब इत्थे आके मैनूं मिल दे हो, ये तां है, ये सारा दिन सोचो मेरे नाल किद्दां बैठे, मैं दरअसल अज इस करके आया, मेरे को टाइम ही नहीं जानदा, मैनूं ये दस्स भी डेट की हुंदी है, डेट मतलब की किसे गोरी नाल चल्ले हो, पता कोई नहीं, मैनूं आंदी आई वांट टू गो टू डेट, अच्छा, ते मैं क्या भी यार डेट मतलब हुण मैं कैलेंडर लैके जा बड़िया।
3: चाह पानी ते कॉफी पीन जिवें चाहिदा, ते सिद्धा कहिंदी मैं फिल्म वेखणी अज डेट ते जान दा कि मतलब हां ओनू पता नहीं सी ना भी थोनू डेट नहीं मतलब पता, अच्छा कोई चक्कर, पता की मैं तरन सुधी गल, मैं बिना पंजाबी फोन लाया।
4: कामयाबी दी मंजिल वल जल्दी ही वध सकते हो, स्पेशल पैकेज दा फायदा उठाउण लई तुसीं साडे हेड ऑफिस नाल संपर्क करो, 416-677-0609
5: नहीं कर ला चुगलियां तू
6: काका, मसा ही बचिया, मैं ना सो
5: के आ गया, मतलब किड्डी तू खुश होनी ओदे बेशर्म जिहा बंदा वो।
6: हेलो
5: होर की
6: अकल ना बोली, पंजाब पुलिस आओ,
5: पंजाब पुलिस हुंदा सी हुण नहीं हैगा,
6: जिद्दा भी है
5: जदों पंजाब पुलिस हुंदा ना बंदा उदों को सारे डरदे है,
6: अच्छा
5: जदों पंजाब पुलिस छड़ दंदा ना फिर वो आप ही मल्ला चेंज कर लेंदा,
6: भाई साहब पर उन्हें तेरे छड़न लगे ने नहीं सोचना भी किथे पैंदी है,
5: नहीं वो तो हुण मैं देखूंगा कि हुण वो पंजाब पुलिस च है नहीं।
6: हेलो
5: गल नहीं बात नहीं,
6: मैं
5: गल करना जो कर
6: तू
5: एवें
6: कर, तू ना

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली होई लग गई
0: हां
1: तू एवे कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं हुंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हां
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो एक ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना
0: यार किद्दां दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: जिन्हें
0: बच्चा ऑर्गेनाइज किया पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: हो वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना काम करते होंगे ना दस जरा मैंने
0: पापा में कुछ भी दे दे ये थोड़ा
1: ऑलवेज बच्चे भी देखन काम भी देखन घर भी देखन डॉलर भी देखन सारा कुछ देखन है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ
1: ਵੀ
0: ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਨੀ
1: ਹੈਲੋ
0: ਨਾਲੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਪਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਫੇਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
1: ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
2: रेडियो अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उन्हां कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: चुटकला।
1: मैनू एक गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड क्यों छड्डी?
2: ओए पागल सीगी।
1: क्यों?
2: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।